रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

उजाला रेडियो यहीं सुन वालों, और यहाँ तक आपने सुने हैं कॉफी चाय मेरा शो, हमने पेश किए हैं आपके वास्ते सत्यम माता दीन के साथ हम ये प्रोग्राम अब समाप्त करने वाले हैं. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Moois rijden. Let goed op jezelf.

0: Ruud Oudin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

मैंने लगा है जो है इश्क या है वो इश्क जैसा कुछ या सो इट्स मुद्दत सें या इधर फिल्म फाइटर वाज दैट द स्टेम फ्रॉम शिल्पा राव मेलोडी एंड विशाल शेखर एंड दिस इज एंटी इन द कैटेगरी ओ गॉड वन मोर रिमिक्स maar wel weer een hele fijne remix, een prachtige cover. Organa kanam he apa jaisa koi. Ja, het is er eentje die we allemaal wel kunnen meezingen.

क्या ये कहे और क्या ये करे, करता है सोचे ना समझे बिना। यह रिस्टम फॉन अरमान मलिक एंड अनन्या बिरला एड फिल्म जज्बाती है दिल।

तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों। तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

चंगी सारी रात सोनिया वे कर लो थोड़ा सा प्यार फिल्म का नाम है जनूनियत एंड इट इज द सेम फनी वन मींस दैट अंकित तिवारी साहब मेड मीट ब्रो इन दिस हिल के फील गुड धमाका गाना हिल के गाना बजाना ऑन द वन एंड ओनली उजाला रेडियो vandaag op deze mooie dag Ami Jeram Kesat. Arisbar, de stem van Kamal Khan. Oh, oh, Jani Jana. Dhoond hai tujhe divana. Film ka naam hai Pyar Kia, to Darna Kia.

तू ते सब से है यारी, मैं तो जिंदगी से हारी, क्यों रब्बा इस कदर तोरी आवे। अरमान मलिक ऑन द वोकल्स, फिल्म का नाम है बदला। आई होप यू एंजॉय द गाना। जो इस वक्त काम पे है, थाउज सिट ऑफ ऑल, लेकर इन द ऑटो ऑन द राइड इज, मुझे आशा है कि आप गाना को पसंद और एंजॉय करेंगे। मैं हूं अमी जयराम, en laten we lekker genieten. Samen genieten van heerlijke Ghana Bajana. Hier on the one and only Ujala Radio. Het Gano Kamega het gezaad. Arisbaar film Jabaria Jori se. Dhoonde Akhiyan.

से नहीं ना टकराए ना जाने क्या ढूंढे अखियां, क्या गाना, बड़ी खूबसूरत सॉन्ग, खूबसूरत गाना। फिल्म का नाम है जबरिया जोरी। दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने। दिट इज द स्टेम फ्रॉम निमंत मेनदान अल तमाश फरीदी, एन अफकोमसख आउट द फिल्म जबरिया जोरी।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

प्यार के साथ दीवानगी का जिक्र हो तो बात में थोड़ी मुस्कान भी आ जाती है। दिल की अपनी पसंद होती है और उसे समझाने के लिए ही हमेशा बड़ी दलील नहीं चाहिए। अब सुनिए फिल्म कर्ज से दर्द ए दिल दर्द ए जिगर।

आपने सुना मोहम्मद रफी का दर्दे दिल दर्दे जिगर फिल्म कर्ज से। दिल की तकलीफ को नाम देना भी अपने आप में एक नरम सा एहसास है। जो बात भीतर रह जाती है उसके लिए कभी इतने भर शब्द काफी लगते हैं।

बिना जिंदगी से, फिल्म आंधी का गीत। किसी की कमी का ख्याल केवल बड़े मौकों पर नहीं आता। कभी चाय का दूसरा प्याला, कभी खाली कुर्सी, कभी अधूरी बातचीत उसे याद दिला देती है। रोजमर्रा की इन्हीं छोटी जगहों में किसी की मौजूदगी कितनी गहरी हो सकती है। इस ख्याल में

0: आज दुलार।
1: तुझे सूरज कहूँ या चंदा, इस नाम में ही कितना स्नेह है। जैसे किसी की तारीफ के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाए। कितना प्यारा अंदाज है दो रोशन नामों के बीच ठहर कर अपनी खुशी जताने का।

आर लिसनिंग टू उजाला रेडियो। साथ देने का वादा सुनने में छोटा लगता है, लेकिन उसमें आने वाले अनगिनत दिनों की जगह होती है। कोई बड़ा अवसर नहीं, बस सामान्य दिनों में भी किसी का पास होना। इसी अपनापन भरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, मैंने पूछा चांद से।

चांद से बात करने का ख्याल कितना सुंदर है। जवाब मिले या ना मिले, कल्पना के लिए पूरा आसमान खुल जाता है। अगला गीत है फिल्म याराना से, छूकर मेरे मन को।

को छूने की बात में किसी बड़े इशारे की जरूरत नहीं होती। कभी कोई सहज बात, कोई छोटा सा ध्यान देर तक याद रहता है। और अब कल्पना एक नया रंग लेती है। सुनिए फिल्म आराधना से मेरे सपनों की रानी।

सपनों की दुनिया की अपनी आजादी है। वहां किसी चेहरे से मिलने से पहले ही उसके लिए जगह बन सकती है। इस ख्याल में हल्की सी शरारत भी है और इंतजार की मिठास भी। फिल्म आराधना के उस नाम से इतना सा ख्याल साथ

दिलबर मेरे फिल्म सत्ते पे सत्ता से किसी अपने को पुकारने का ये सीधा सा अंदाज अच्छा लगता है। अब बात जिंदगी से होती है, सुनिए फिल्म मासूम का गीत, तुझसे नाराज नहीं।

बहरो थाम लो अब दिल, मुकेश जी के साथ लता जी से गीत को आप सुने और फिल्म का नाम नमस्ते जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम, अब हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी।

शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा, इसलिए आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म राम और श्याम से आप सुने आज का उजाला रेडियो का प्रोग्राम में।

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

0: उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस। Man aangehouden voor dodelijke schietpartij in Amsterdam, bij Bar São Paulo aan Amstelveenseweg. Verenigde Lijst wint Letse verkiezingen met ruim 1/3 van de stemmen. PP-leider Feijóo roept tot vervroegde verkiezingen na parlementaire nederlaag Sanchez over woningbeleid. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis in meerdere grote steden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

बिनकोर ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोर ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

Priya Saraya एंड अरिजीत सिंह, इन दोनों की आवाजों में आप इस गीत को सुने। एंड बेनी दयाल के साथ अब श्रेया घोषाल को सुनिए युवाड़ू जला रेडियो पर।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोल मोल नहीं होती। और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

दुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, दुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती, दुनिया फोर ट्वेंटी।

चुकी है रीत निराली सुन सब लेते करे कवाली अकल का अंधा गाट का थोड़ा दिल में मुहब्बत का कितना खाली।

तो चाहिए मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में जानी, जहाँ भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे